संत बाबा अतर सिंह महापुरुष मस्तु आने वाले कोल गुरसिख बैठे ने एक कल्याण सिंह भी बैठे। महापुरखा ने आख्या अज भई चित कर दे धर्म दे किरत दी रोटी खाई। किरत दी रोटी कहन लगे महाराज जो हुक्म अज ही प्रबंध कर लेने आ। मजदूरां वाले कपड़े पा ले, एक ठेकेदार दे कोल चले गए जेड़ा बिल्डिंग बना रहा सी। भाई कल्याण सिंह जी पंज सत गुरसिखां नूं नाल लेके जदों उहदे कोल पहुंचे हन, कहन लगा जी असी मजदूरी करना चाहते हाँ करो। आठ घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है करांगे। मजदूरी तय हो गई, जितना काम अठां घंटियां विच करना सी चौ घंटियां विच कर दिता। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम श्री वाहे। ठेकेदार ने बुला के आख्या ऐ फड़ो पैसे ते जाओ। कहन लगे नहीं वायदा अठ घंटे दा है। फिर दुगनी मजूरी देन लगा, कहन लगे नहीं जो बचन होया है ओ ही लवां। कहन लगा पहले मजदूर वेखे ने अजीब आदमी हैं, ऐसे बंदे ता मिले नहीं। खैर जदों उन्हां पैसियां दा समान लियांदा आटा प्यो दाल ते फिर हत्थी बना के बाबा अतर सिंह जी नूं छकाया, छक के बाबा जी इतने प्रसन्नता विच आए कहन लगे अज ते लंगर छकण दा आनंद आ गया, कल आपां भी चलांगे भाई। बाबा अतर सिंह जी ने भी मजदूरां वाले भेस कर ले। अज उसे ठेकेदार कोल पहुंचे, अज भी भाई काम मिलेगा। ठेकेदार उन्हां वल बार बार तक रहा है कि ये मजदूर नहीं हैं, ये कोई फरिश्ते नहीं, ये कोई होर लोक दे बंदे आए हैं। ते जदों वेखद्या वेखद्या बाबा अतर सिंह जी ते निगाह पई ते चरणा ते डिग पिया, कहन लगा तू मजदूर नहीं है। ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राख्या रतन न छपे छपाया। गुरु की साथ संगत कहन लगा तुसी मजदूर नहीं ते कल दा ही मेरे दिमाग ते बड़ा बोझ पिया होया है, ते अज तुसी आए हो मैनू माफी दे दियो। मैं ए गुनाह नहीं कर सकदा कि तुसी मेरे सामने टोकरी चुको। कुछ सिख लंघ रहे सन, उन्होंने वेख्या ओए बाबा अतर सिंह जी इत्थे खड़े ने, ते झट चरना ते मथा टेकिया। गुरु की साध संगत कहन लगे बाबा जी आप दी किरत तां एहो ही है कि आप कीर्तन सुनाओ, सानू चंगे राह लाओ, ते आप इस भेस विच खड़े हो। ते फिर कहंदे ने बाबा अतर सिंह जी ने सिंघां वल वेख्या
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 18 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ 18 ਹੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा, मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा, जो पिंड सतिसा सब कुछ है तेरा, माने ने माने तू तने तेरा परवासा, बिन साचे अंते को है तो जानू काचा।

तो तुम ते लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता।

तेरा खेल अखाड़ा जियो। तुर बिंदु जा और ना कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। क्या कहिए किस आस सुनाइए, जो कहना सब प्रभु जी पास। सब कुछ किता तेरा वरते, सदा सदा तेरी आस। जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई,

जन को तब अपने कतान जो तू करे करावे स्वामी सा मतलब परवा चरण शरण हम अनाथ ना फरतनी अपनी कृपा करे चल कमल नानक आला दे किस दिन आम के पत परमेश्वर गत मरायण तन गोपाल गुण साखी।

मुद्दिन होत साधु तुरे आवन जानो रे चित पाई जल मरन के मिटे वसूरे गुरु नारायण दा गुरु गुर सच्चा सिद्धन हार गुर तुठे सब कुछ पाया जन नानक सब बनिहार।

कत हूँ सुचेत हो के चेतना को चार किया, कत हूँ अचिंत हो के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी, बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी। कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो।

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नूं मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उत्ते, जिस वेले उसने दुश्मन नूं दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें, गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहो सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दिओ, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़ के कह दिओ आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दिया, हजारां लोग तुहाडे कोल आओ। ये पहल तू करनी है। प्यार असा देना है, लेना नहीं। देवे तो ठीक है, पर असी कहने इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाइए ना भाई। वो नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी। भावे कोई मोमन वेख रहा है, भावे कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मूंह विच देंदा होया इको ही पुकार है, केड़ी

कऊ जच गंधर्व उरग कऊ विद्याधर कहूं भय किन्नर पिसाच कऊ प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कहूं हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब हो के पुराण को पढ़त मत कतहूं।

कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत हो, कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो।

पावक में अर पवन हूँ मैं, पृथ्वी तल में सुकहा न जाय। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाही। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे।

बहुत प्रसाद करावे पाठ करावे पर जे निंदा हो गई ओ भी किसे महापुरख दी ते कोई भी कीता होया कर्म फलीभूत नहीं हुंदा। जेड़ा मनुख इस भयंकर रोग विच फसे है

गुरु अर्जन देव जी अपने शब्द विच फरमान कर देंगे। निंदक दी ए निशानी है, जदों किसे दा भला हुंदा होया वेखेगा ते दुखी होएगा, ते जदों किसे दा बुरा हुंदा वेखेगा उदों प्रसन्नता विच आंदे, खुशी विच आंदे। वड्डी निशानी निंदक दी ए वे, हजूर कहंदे ने

मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते

मैं तेरे तो बलिहारी जावा, मैनू भगती दी दात दे जिदे करके ए मेरे जीवन दी बेड़ी संसार समुंदर तो पार लंघ सके। ता आओ कृपा करो सरवण।

कदे किसे दूजे धर्म दे बच्चे नू किसे ने पुछया भी तेरा धर्म केड़ा है, तेरी जात केड़ी है, तेरी गोत केड़ी है। ना आपस विच प्यार नाल हसते ने खेड़दे ने। सतगुरु कहंदे ने जे रब नू मिलना ही ते बच्चे वर्गा पूंजा। ये बड़ा भोला है, बड़ा चंगा है।

मेरे मालिक मैं तेरे नाल जुड़ जा, तेरी गलवकड़ी विच आ जा, तेरे विच समा जावा, मन करके तन करके, अधूरा नहीं, केवल तन करके जुड़िया हुआ, मन ना जुड़िया हुए ऐसा भी नहीं। ते जे मैं ऐसे बहाने करा कि मेरा तो मन जुड़िया है, तन की केड़ी लोड़, प्यार तो इस तरह कोई नहीं होता। जिन्होंने प्यार किया है महाराज उन्होंने गल करते, गुरसिखा की गल करते हैं, भगतों की गल करते हैं, संतों की गल करते हैं जिन्होंने प्यार किया, प्यार किया तो फिर भरपूर किया। प्यार च अधूरेपन की गल, जब भरपूर प्यार करना है तो फिर तनो मनो प्यार करना। तुसा वेखिया सुहागना पति नाल मिठा बोल दिया ने, ते पति की प्रसन्नता वास्ते तरह तरह के शिंगार भी कर दिया, पति की प्रसन्नता वास्ते चंगे पकवान भी पकाउंदियां। पति थोड़ी देर पछड़ जाए घर आउण तो बौलियां होईयां फिरदियां रहिंदियां ने, मन विच भी प्यार है, शरीर करके भी पति की प्रसन्नता लैण वास्ते प्रयत्नशील है। ते जे कोई कहे मैं तां अंदरों प्यार करदा, बाहरले प्यार की कहड़ी लोड़ है, घर बैठा रहे, गुरद्वारे आउण दी थां नहीं, गुंजाइश नहीं, समा नहीं, अधूरा प्यार लैके बैठा होगा बल तां होना ही कोई। एक ऐसा भी हो सकता है जिहड़ा गुरुद्वारे आके बैठ गए, मन इत्थे नहीं पिया जुड़दा, मन किते संतान ते रह गया है, मन किते मकान ते रह गया है, मन किते दुकान ते रह गया है, मन किते भटकदा रह गया है, शरीर करके इत्थे बैठा रह गया है, अधूरी हाजरी लगेगी। और वह बड़ी खास कथा है जिहड़ी साहिब कलगीधर पातशाह दे द्वारपाल दो गुरसिखां विचों एक चला गया सी, रात नूं रासधारियां दी रास वेखण चला गया सी। सवेरे आया ते महाराज ने पुछ लिया क्यों भई रात हाजिर रहे सो, बड़ा परेशान होया। महाराज ने पुछिया क्यों भई रात पहरे ते हाजिर रहे सो, बोल पिया, कहन लगा महाराज मैं गैर हाजिर हो गया सी, किथे गया सै, कहिंदा जी रास वेखण चला गया सी। अनाल दे पिंड रासधारीए बड़े गुणी आए सन, बड़ा चिर हो गया सी, जद तो तुहाडे चरणा विच आया इस पासे कदे गए नहीं सन, चला गया सा, गलती हो गई। साहब कह लगे चंगा कीता, जे गया है चंगा कीता, तू दस की वेखिया ते की सुनिया। कह लगा महाराज चंगा कोई नहीं कीता, मैं बहुत माड़ा कीता, एक तां गैर हाजरी कीती, सेवा तो गैर हाजरी की, एक मैं गलत पासे गया, चंगा तो मैं कोई नहीं कीता। महाराज कह लगे चंगा फिर दस वेखिया की ते सुनिया की, सिर नीवा करके खलोरिया, खिमा मंगी। महाराज ने फिर पूछिया वेखिया की ते सुनिया की, कहिंदा महाराज ना कुछ वेखिया ते ना सुनिया। क्यों भाई ऐसा किवें हो गया? कहन लगा महाराज गया तो बड़ा धा के सा, ते भीड़ नूं चीरदा सिरे ते जा पहुंचिया, पर उत्थे कुछ कहानी होर तरह हो गई। लोग रासधारियां नूं छड़ के मेरे वल वेखन लग पए, और कुछ लोग गल्लां भी करन लग पए, गुरु का सिख इत्थे किधर फिरदा, वेस तो गुरु का सिख जापदा, इहदी दोहरी दस्तार, इहदी श्री साहब, इहदे रहनी बहनी दे सारे लक्षण पूर्ण गुरसिखां वाले ने, इत्थे की करना है? ते जे इत्थे आया रात इत्थे जागदा रहा, अमृत वेले किवें जागेगा? जे अमृत वेले ना जागिया ते नितनेम किवें करेगा? नितनेम ना करेगा ते फिर सिख किवें होया? फिर तां कोई बरूपिया ही होना। जिवें असीं रासधारीए तरह तरह के रूप धारण करके ते लोकां दा जीव परचावा पै करने आ, किते वी तां नहीं सिख दा रूप धारण करके अपना या लोकां दा जीव परचावा करदा फिरदा हो? कहिंदा महाराज उन्होंने गल्लां कीतियां ते मेरे कोल खलोना औखा हो गया, मैं पिछा नूं निकलना चाहिया पर निकलन नहीं दिता उन्होंने, मैं उत्थे ही सिर गोडियां च दे के बैठ गया। महाराज ना मैं कुछ सुनिया ते ना कुछ वेखिया है, तुहाडे चरणां दा ध्यान करके पछताउंदा रहा। साहब कहन लगे तू फिर कहदा गैर हाजिर होया, तेरा मन तां इत्थे रहा ना। दूजे नूं कहन लगे तू तां हाजिर रहा कि महाराज मैं तां किधरे कदम नहीं हिलिया। साहब कहन लगे कदम तां तेरे शरीर दे नहीं हिले, मन करके भी हाजिर रहे हैं, गड़बड़ा गया। कहन लगा महाराज मन तां मेरा इहदे मगर तुर गया सी, मन तां मेरा रासधारियां वाले टिकाणे ते पहुंच गया सी, उन्हां दीआं आवाज़ां मेरे कन्नां च आउंदियां रहियां ते मैं रचना रच के इस तरह नचदे होणगे, इस तरह फेरे लैंदे रहे होणगे, मैं उह तमाशा अखां दे सामने बना के वेखदा रहा। साहब कहन लगे इह बंदा हाजिर सी शरीर करके, लेकिन मन करके गैर हाजिर सी, बड़ा पछतावा लगा। इहदे नाल तां जाण वाला ही चंगा रहा। महाराज कहन लगे नहीं, तुसां दोवां चंगा नहीं कीता, जिहड़ा मेरे सरूप नूं गलत जगह ते लै गया है इहने वी मेरे नाल धरोह कमाया।
मन करके हाजिर रहा है लेकिन शरीर मेरा स्वरूप तो उथे लै गया है। जेड़ा शरीर करके इथे रहा है मन करके उथे फिर मैनू ये अधूरे प्रेमी दोवे।

भगत नु गुरु प्यार वाले नु बिना गुरु के दर्शन ते गुरु के दर्शन दे भी दो अर्थ ने ना, एक ता दीदार जिहड़ी अखां नाल करने आ आपां, एक दर्शन संस्कृत फलसफे नु कहिंदे ने, जो गुरु की फलसफी है जे उहनूं नहीं समझिया ते दर्शन सदा अधूरे रह जाणगे। सतगुर नु सब को देखदा जेता जगत संसार, डिठे मुक्त ना होवे चिचर गुर शब्द ना करे प्या, गुर शब्द ना करे विचार। जिन्ना चिर गुरु के शब्द दी विचार, गुरु के बचना दा अध्ययन, गुरु के बचना दी कमाई ना कीती, उन्ना चिर केवल आए मत्था टेक के तुर गए ता प्यार बढ़ा दूंगा। इस तरह वेखिया गल नहीं बननी, अखां नाल गुरु के सोहने दर्शन दिदारे ते मन नाल गुरु के दर्शन भाव गुरु के फलासफी दी विचार, गुरमत दी विचार चले। मन तन करके इथे महाराज कहंदे ने नहीं रह सकदा गुरु का सिख, गुरु के दोहां दर्शना बिना, फलासफी बिना ते देखे बिना गुरु नूं कोई नहीं इहदा गुजारा हुंदा। दासां ने पावे बिन दरसावे इक खिण धीरज क्यों करे, नाम बिहूणा तन मन हीना, जल बिन मछली ज्यों मरे। बंदा तड़फदा फिरदा रह जांदा, गुरु तो टुटिया, ईश्वर तो टुटिया होया, नाम तो टुटिया होया बंदा, मन करके तन करके बेचैनी विच रहिंदा। जिवें मच्छी पानी चो बाहर कढ के सुट दईए, उहनूं कहीए तां केवल शरीर करके तड़फरीए, मन तां इहदा सुखी है, कोई नहीं मन सुखी रहिंदा। उह जिहड़ी शरीर करके तड़फरीए अंदरों भी दुखी, ते जिहड़ा बंदा अंदरों दुखी है उह शरीर करके भी तकरीबन दुखी हुंदा है। आ तुसां देखिआ बंदे नूं गुस्सा आ जावे, कहिंदा मेरा तां तन मन पिआ सड़दा, कहिंदा और उंज भी चेहरा भी लाल सूहा हो जाएगा, हथ पैर कंबण लग पैणगे। हुण गुस्सा तां मन नूं आया, तेरे शरीर नूं की हो गया। और एक दिन ऐसा भी आवेगा डॉक्टर कहणगे गुस्सा ना करिया कर, तेरा खाना तेनू कोई नहीं प्यासम हुंदा, तेरा मेदा काम नहीं करदा, क्यों मेदा तां शरीर है, मेदा तां शरीर दा केंद्र है, गुस्से दा दिमाग च गुस्से दा मेदे नाल की तलक है, बहुत वड्डा तलक। क्रोध करन वाला, चिंता करन वाला अज नहीं ते कल नूं बहुत वड्डा बीमार हो जाएगा। शरीर ते मन दा बड़ा संबंध है, प्यार मन ते तन दोहां तरीकियां दे नाल पुगदा है, एक तरीके नाल कोई नहीं पुगदा। महाराज कहिंदे ने जिहड़े टुट गए ने प्यार तो उन्हां दा मन ते तन दोवें कमजोर बेचैन दुखी रहिंदे ने, नाम बिहूना तन मन हीना, जल बिन मछली ज्यों मरे। ते कहिंदे ने मैनूं इहो जी मौत, इहो जिहा तड़फणा, इहो

कबहू ना डरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटिए, जुलम नूं देख के कदम पछा ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीहां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है।

सिखी किन्नी प्यारी है सिख नू, ओ मेरी मां नहीं, हो सकता है ओदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर ओ सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मावां इंज सिदकों डोलदियां नहीं होंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक वारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ते तेनू छड देणगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, जाद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका अजे बहुते दिन नहीं होए, किमें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नू सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, जाद कर सिंघां दियां मावां कदों सिदकों डोलदियां ने, ओ ते आखदियां ने जा पुत्रा, अज गोविंद सिंह नू तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया, इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लकोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तर दे जकारे निकल रहे।

कुमार जी श्री दर्शन कुमार जी वालों पेश की गई है। आप समूह संगत नू खालसा जी दे 300 साल जन्म दिवस की लख लख बधाई होवे। सतसंगियो आस है कि इन्हां दी ए सेवा आप कबूलोगे कि अगों वास्ते अरदास करोगे महाराज बख्शिश करो। ऐसे ही तरह आप संगतां दी ए सेवा करदे रहन। शब्द गुरबाणी दियां कैसतां इतिहास दियां कैसतां घर घर विच पहुँचांदे रहन।

लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखे आवन जान नानक मती मिठिया कर्म सच्चा निशान सच्चा सहब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू ने तिस वेले सच तो तिनी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मनमुखी जन्म गवाया।

वृंदावन में रंग किया, कल में भेदिया चरण हुआ, नाम खुदाई अलो पया, नील वस्त्र लै कपे पैरे, तुर्क पठानी अमल किया।

पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हर संवारिया कोठे मंडप मारियां लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन भाव दे हर पुजन नहीं हारिया कर फरमाए सिखाया वेख मैं।

जित मुखदा सलाहिए पागा रती चार नानक तिम कुजले ते सच्चे दरबार पौड़ी सब को आखे अपना।

0: पूर पूर देख दे,
1: पाट गए ने कागज तुसा दे लेख दे, हार गए तुसानू समझौ दे कल दे, देखांगे तसीरे तुसी किवे नहीं चल दे, पाप दिया पंडा ने जलाद बन दे।

सतगुरु गुरु गोविंद सिंह साहिब जी दे अनन प्यारे सिख कथन करदे ने, अगर तेरा दिल पवित्र है ते वाहिगुरु पारब्रह्म परमेश्वर तेरे अंदर वसदा, ते जे तेरे नेत्र साफ हन उन्हां विच ज्ञान दी दृष्टि है, मंदिर वल वेख, मस्जिद वल देख, चर्च वल देख, इमाम शाफे वल देख, सारे जगह ते तैनू ओ व्यापक मौजूद नजरी आएगा, क्योंकि सारा संसार एक दी उपज है, एक माता पिता दी।

समझदार सोजी वाले एक होर रस भी है जिन्हों नाम का रस कहते हरी का रस कहते होर बड़े स्वाद तू वेखे हो मालक ने बड़ी प्यारी रचना बनाई साढ़े जेड़े ज्ञान इंद्रे ने ना पांच ज्ञान इंद्रे फाइव सेंसेस अखा वेख दिया जीभ चखदी कान सुनदे ने नक सुंघदा है शरीर दी त्वचा शरीर दी स्किन जो है छोह के पता लाउंदी आला दुआला की है लेकिन इहदे नाल इक होर भी गल है इन्हां पंजां ही ज्ञान इंद्रियां च मालक ने रस भी पा छड़े स्वाद भर छड़े अखां वेखदियां भी ने वेखण दा रस भी लैंदियां जे तां नजारा वधिया है ते अखां रस लैंदियां ते जे नहीं तां फिर मूंह दूजे पासे भी हो जांदा जे सुनी जाण वाली आवाज सुरीली है रस विच है सुर विच है ते बंदा ध्यान नाल सुणदा है बल्कि हमातन गोश सारा शरीर कानी बन जांदा है पूरा ध्यान पर जे वो आवाज बेसुरी हो ते कन्ना चुंगलां भी दे लेंदा अण पौंदा शोर होवे ते नहीं भी बर्दाश्त होंदा इसे तरह सुंघण दी शक्ति कदे बदबू भी लैंदी ते दुखी भी होंदी है खुशबू नाल सुखी भी होंदी जीव ते कुछ कौड़ा आ जावे ते थू थू भी बंदा करदा है कुछ स्वादला आ जावे ते अखा भी बोल दियां ने रस आया इन्हां पंजां ज्ञान इंद्रियां विच ही रस मालक ने भरे इह नखेड़ लैंदे ने रस देण वाली केड़ी केड़ी वस्तु ते फिर उस रस पिछे स्वाद देण वाली शय पिछे कई बार बंदा कमला भी हो जाता इथों तक कमला होया बंदा कई बार इन्हां रसां पिछे सुनन दे रस पिछे सुंघण दे रस पिछे वेखण दे रस पिछे छोण दे रस पिछे चखण दे रस पिछे इन्हां स्वादां च कई बार बंदा इन्ना कमला हो गया जानवरां तों वी थले जा पे पावन बाणी च बचना है मृग मीन भृंग पतंग कुंचर मृग नूं हिरण नूं कन्नां दा रस है मच्छी नूं जीभा दा रस है पवरे नूं सुंघण दा रस पिया है फुल दे विच बैठा बैठा विच ही शहीद हो जांदा है फुल मिटिया जांदा विच खत्म हो जांदा पतंगा अखां दे रोग दा मारिया है इहनूं वेखण दा रस है ज्योति उत्ते सड़ मरदा है पर महाराज कहिंदे ने देखो कैसी गल है मिर्ग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख बिनास इन्हां नूं एक एक स्वाद पिया ते पंच दोख असाध जामे बंदे नूं तां पंजे पंजे कट्ठे भी लगे होए तां वी तां की केतक आस इहदा किवें बचाओ

आत्म रस जाने है, मेरे विच ओदे विच ते रब विच कोई फर्क नहीं। बंदा इन्ना भी उच्चा उठ सकता है कि कलगी धर की समानता कर सके, निरंकार की समानता कर सके, कर सकता है। साहब कहते हैं जिन जाता सोते से ही जे आ, जेड़ा वाहिगुरू नूं जान लैंदा ओदे वर्गा ही हो जाता। जिन्हां नूं आत्म रस आए, इत्थे महाराज ने आत्म रस की गल की, खोजत खोजत खोज विचारे हो, बड़ा लभ्या, लोगों ने रास्ते मारिया ने, दुनिया के भटक भटक के स्वाद के टिकाने लभण का यतन किया। पर कहिंदे ने असल सारिया तो स्वादला रस, सदा टिकिया रहने वाला रस, परेशान ना करने वाला रस, दूजे रस बंदे नूं परेशान कर दे। मनुख नूं टिकाओ ते शांति चैन बख्शन वाला रस, किल विख काटे निमुख आराधे आ, गुरमुख बार उतारा, उन्हां रसां ने बंदे नूं पापी बना दिता। कई बार नाम रस ने बंदे नूं देवता बना दिता, पाप धो दिते ने। किल विख काटे निमुख आराधे आ, गुरमुख पार उतारा, गुरमुख इस रस नूं लैंदा होया इस जिंदगी विचों सुरखरू होके जांदा, मुक्त हो जांदा। प्रेरणा बख्शिश कीती, हर रस पीवो पुरख ज्ञानी, समझदार बंदे हो, वह रस लैण दा जतन करो। सुन सुन महा तृप्त मन पावे, उन्हां रसां नूं लै के बंदा कदे रजिया नहीं। कई बार भुख वधदी फिर भी अतृप्त रहिंदा है, सुंघण वाला सुंघदा भी रहिंदा है फिर भी अतृप्त रहिंदा है, कोई भुख होर बनी रहिंदी, सुनदियां दी भुख कोई होर भी बनी रहिंदी, बल्कि कई बार सुनन तो तंग भी आ जांदा है, कोई होर भुख जाग पैंदी। ते जिसनूं नाम दा रस आ गया, भगती दा रस आ गया, बाणी दा रस आ गया, ओ रस छाडे, ए रस आवा, ए रस आवा, ओ रस नहीं पावा। जदों ये स्वाद आ जावे, तुसां वेखिया आम साई लोग, रब दे बंदे, प्यार वाले संत भगत जन प्रसाद आदिक बड़ा सधारण छकदे। की वजह है? क्योंकि उन्होंने रस किधरों होर दो आ रहा है, स्वाद स्वाद उन्होंने प्रसादे चो नहीं लैना, रोटी विचों स्वाद नहीं भालते, किधरों होर दो स्वाद लै रहे हैं, उन्होंने रस अंदरों आ रहे हैं, वो अखां बार बार के इधर उधर नहीं वेखते, क्योंकि उन्होंने वेखण चो रस नहीं आ रहा, अंदरों कोई रस आ रहा, वो आ कच्चे पक्के संगीत का रस लैण का जतन नहीं करते, गंदे गंदे गाणियां नूं सुन के रस लैण का जतन नहीं करते, उन्होंने अंदर रस टिकिया हो, कोई अंदरों रस फुट रहा उन्होंने। उन्हां मस्तियां नाल भरे बंदियां दी गल है, सुन सुन महा तृप्त मन पावे, साधु अमृत बाणी, अमृत बाणी नूं सुन सुन के, जप जप के, आराध आराध के, विचार विचार के पक्की तृप्ति महा तृप्ति प्राप्त करदे ने। ते जिन्हां ने इस रस नूं लैण दा यतन कीता है, साहिब कहिंदे ने उह ऐसा भी करदे ने, श्रवणी सुनिए रसना गाइए हिरदय त्याई सोई, कन्ना नाल सुनते ने वाहगुरु की गल, जीवा नाल जपते ने वाहगुरु का नाम, हिरदे विच याद करते ने वाहगुरु, श्रवणी सुनिए रसना गाइए हिरदय त्याई सोई, करण कारण समर्थ स्वामी जानते बिरथा ना कोई। वो सच्चे वाहगुरु नाल जुड़न वाला बंदा कदे निराश नहीं होया, भागां नाले जन्म प्राप्त होया है, ते कई बार बंदे दा रसां विच ही बीत जांदा, रसां विच ही लंघ जांदा। वड़े भाग रतन जन्म पाया, रतन जन्म कीमती जन्म, हीरियां तो कीमती जन्म, ते निके निके स्वादां च बीत जावे ते गल कोई ना होई, सौदा बड़ा महंगा रहे। वड़े भाग रतन जन्म पाया, करो कृपा कृपाला, साध संग नानक गुण गावे सिमरे सदा गोपाला। मेरे साहब मेरे ते रहमत करो, मैनू ये रस आ जावे, मैनू ये स्वाद आ जावे, तेरा सिमरन हिरदे च वस जा, सत्संगियां नाल रल के मैं तेरा जस गावां, ते इहदे विचों रस मैनू आ जा, ये रस आ जावे ना। धन गुरु नानक ने मरदाने नूं एक गल कही सी, भाई मरदाना कहन लगा पातशाह साहिब तां उह नजारा कर रहे ने मलक भागो दियां, उन्हां पकवाना पूड़ियां विचों साहिब लहू कढ के दिखा रहे ने, भाई लालो दे कोधरे विचों दुध कढ के विखा रहे ने, ते भाई मरदाना तां कोल बैठा सी, उहने दो चार बुरकियां मलक भागो दियां भी पा लईआं सन, उहने इहदा भी रस लिया सी। धन गुरु नानक नूं कहण लगा पातशाह तुसीं तां अपने तौर ते साबित कर रहे हो किहड़ा ठीक है ते किहड़ा गलत है, पर जे मैं तुहानूं सच्ची गल हिरदे दी दसां, सुनन वाले सुन रहे ने, तन गुरु नानक कहण लगे मरदाने दस हिरदे की गल दस,
ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਭੋਜਨ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੁੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਸ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਰਦਾਨੇ ਆ, ਸਵਾਦ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਦ ਕੋਧਰੇ ਜਾਂ ਪੂੜੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਦ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਭੋਜਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਹਨੇ ਖੇਚਲ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ ਭੋਜਨ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਚ ਰਸ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਸ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਰਸ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦਿਸਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ਤਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਸ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਿਰਨ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਸਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦਾ, ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਸ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ।

लोक मथे रखने वास्ते तेरे चरणा से पहुंच सदके अग्नि गोविंद सिंह तेरा ही करना शुक्र है जे गुरु के प्यारे गुरु के सुख दीदार होते करने वास्ते जान ते फिर इस मन नाल जान इस ख्याल नाल जान के धन सो दे इस जहां तो वस्या मेरे सज्जन मीत मुरारे मेरे सज्जन ते मीत मित्र घनेरे करत की मेरा तुम का देखो धन सो मीत धन सो दे मेरे सज्जन ते मीत।

समझ लेना ढिला है, कोई तकलीफ है शरीर दे अंदर, जो आलस कर रहे है। पुराने बुजुर्ग कहते होंगे सन, आलस जेहा रोग ना जापे जग विच होर, अवगुण सिखे आलसी बन अपना ही चोर। जेड़ा बंदा उठ के काम करन नू उत्साह नहीं ना रखता, समझ लेना उहदे शरीर च कोई कसर है। शरीर नू कोई दुख होवेगा, अंदर पल रहा होवेगा रोग, जेड़ा सामने नहीं आया, डायग्नोज नहीं होया, लेकिन अंदर कोई गल है जेड़ी उठन नहीं पी देंदी, जेड़ी उत्साह दे राह च रुकावट बनी हुई। इसे तरह मन की भी अवस्था है, मन जे बाणी वाल ना लगता हो, भगती वाल ना लगता हो, समझ लैना इनू कोई रोग है या काम है या क्रोध है, कोई ना कोई रोग डाढ़ा लगा है जिहड़ा चंगे पासे नहीं लगता। बुरे पासे दियां गल्लां करन वाला मन रोगी है, चंगे पासे दी गल सोचन वाला मन अरोग है। परउपकार ते सेवा दी गल अरोग मन सोचेगा, लोभ दी गल मोह दी गल विकारी मन सोचेगा, रोगी मन ते आलसी मन सोचेगा। और तुसी वेखो, बंदा किसे काम विच लगा होवे ना, जेड़ा काम उनू पाउंदा ना हो, उहदे कोलो जबरदस्ती कराया जा रहा होवे या उनू जबरदस्ती करना पै रहा हो, चाहे व्यापार होवे चाहे वगार हो, किसी अफसर दे अधीन कोई काम करना पै रहा है या किसी